कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो, जमन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है तह हमारा, जमन काल सब

केहे विद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कहे पूपा, अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पोज खान बहुर रच दीनी, कहूं फूल राजा होय बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर इकैठा, सिगरी सृष्ट दिखाए।

मन बांछत फल पावै सोई, दुख न तिसै ब्यापत कोई। अड़िल सुनै गुंग जोई आहे सुरस न पावई, सुनै मोड़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पा

पई सांबत सत रह सहस पणिजै अर्ध सहस पुन तीन कहिजै भाद्रो सुदी अष्टमी रव बारा तीर स्तुद्रव ग्रंथ सुधार।

बनाओ, किसन बिसन कब हूँ नै त्याओ, कान सुने पहचान न तिन सो, लिव लागी मोरी पग इन सो, महाकाल रखवार हमारो, महालो मैं किंकर थारो, अपना जान करो रखवार, बाहे गहे की लाज विचार, अपना जान मुझे प्रत परिय, चुन चुन सत्र हमारे मरिय, देग तेग जग मैं दो चले, राख आप मोहे और ना धले, तुम मम करो सत्र।

जान दै हाथ उबारो, हमरे सब बैरियन संगारो। प्रथम तरो भगवत को ध्याना, बहुर करो कविता विधनाना। कृष्ण जथा मत चरित्र उचारो, चूक होए कब लेहो सुधारो। कभियो बाच दोहरा, जो निज प्रभ मोस

मऊ कोटक बिशन महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते रव सस क्रोर जलेश दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भाकत नेत सुर्ग बास रघुबर करा।

राग रतन परवार परिया शब्द गावण आया शब्दो तगावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाल।

सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की।

हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नामा दा टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनंती सुनहो मेरे मीता संत टहल की बेला ईहा खाट चलहो हरलाहा गबसन सोहेला औध कटा दिन सरै नारे मन गुरमिल काज सुवारे रहाओ एहो संसार बेकार संसे मह तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिस है जगाए पिया वैहु रस अकथ कथा तिन जानी जा कौ आए सोई बिहज हर गुर ते मन है बसेरा निज घर महल पाव हो सुख सह

त्रिमान है, निदान है, त्रिवर्ग है, सर्ग है, अनिल है, नाद है, जे है, जाद है, जन्म है, वर्ण है, भूत है, पर्ण है, गंज है, पंज है, तूज है, चंज है, मीक है, रफीक है, तंद है, बंद है, निर्भूज है, सूज है, अकाल है, अजाल है, लाह है, जाह है, अनंत है, महंत है, लीक है, निरश्रीक है, निरलंब है, संभ है, गम है, जम है, अपूत है, छूत है, लोक है, शोक है, कर्म है, परम है, जीत है, पीत है, बाह है, गाह है, अमान है, निदान है, नेक है, फिर एक है, पोजंग पर्याप्त छंद, नमो सर्वमाने समस्ति निदाने, नमो देव देवे पेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे निरसंगी परमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत नृते, नमो नाद नाते, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे प्रपंगी परमाथे समस्ति विभूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजे स्वरण परम रूपे, नमो जोग जोगे स्वरण परम सिद्धे, नमो राज राजे स्वरण परम वृद्धे, नमो शास्त्र पाणे, नमो अस्त्र माणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते, नमो जोग जोगे स्वरण परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रेत देवे सोतर्मे, नमो रोग हरता, नमो राग रूपे, नमो साह साह, नमो कूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तं स्नान, नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंत्र जंत्रं, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं, सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनुपे रूपे समस्तुल निवासी, सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बृद्ध करता दो उर्द अर्दं अगं ओग हरता परम परम परमेश वरं प्रोच पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अछेदी अभेदी अनामं अकामं समस्तो प्राजी समस्तस्तु तामं, तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं, थले हैं, पीठ हैं, पे हैं, प्रभु हैं, जू हैं, देश हैं, पेश हैं, पोजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे, नमो सर्वमाने समस्ति निदाने, नमस्तवंग निर्नाथे, नमस्तवंग परमाथे, नमस्तवंग अगंजे, नमस्तवंग पंजे, नमस्तवंग अकाले, नमस्तवंग अपाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्वपेशे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो साह साहे, नमो माह माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे, नमो सोख सोखे, नमो सर्वरोगे, नमो सर्वभोगे, नमो सर्वजीतं, नमो सर्वपीतं, नमो सर्वज्ञानं, नमो परमतानं, नमो सर्वमंत्रं, नमो सर्वजंत्रं, नमो सर्वदृश्यं, नमो सर्वकृष्णं, नमो सर्वरंगे त्रिपंगी नंगे, नमो जीव जीव, नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा रिद सिद्धं निवासी चर प्रछंद प्रसाद अमृत कर्मे अमृत परमे अखल जोगे चल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल तरमंग लख करमंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राण सर्वंग त्राण सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवं सर्वंग देवं सर्वं काले सर्वं पाले रूआल छंद प्रसाद आदि रूप अनाद मूर्त जौन पुरख पार सर्वमान त्रिमान देव पेवाद उदार सर्व पालक सर्व काल सर्व कुपन काल जत्र तत्र विराज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जा कर रूप रंग न रेख आदि पुरख उदार मूर्त जौन आदि सेख देश और न पेश जा कर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा

हैं, प्रकाश हैं, निचिंत हैं, सुनिंत हैं, लिख हैं, देख हैं, लेख हैं, पेख हैं, डाह हैं, गाह हैं, असंभ हैं, अगम्भ हैं, नील हैं, नाद हैं, नित हैं, सुनित हैं, जात हैं, जाद हैं, चप्ट छंद प्रस्वाद सर्वंगहंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंग्याता सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता सर्वंप्राणं सर्वंप्राणं सर्वंकर्मं सर्वंकर्मं सर्वंयुक्ता सर्वंयुक्ता रसावल छंद प्रसाद नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे नंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्मं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्भाद विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निर्पंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रा न पुत्रा न सत्रा न मित्रा न ताता न माता न जाता न पाता निरसाकं श्री कह मितोमी कह सदैवं प्रभा है जय है जा है भगवती छंद प्रसाद के जहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशल सलाम है समस्त उल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसन उल चिराग है के कमल करीम है के राज करीम है के रोजी देहंद है के राज करहंद है करीम उल कमाल है के हुसन उल जमाल है गरीम उल खराज है गरीब उल निवाज है हरी फुल सिकन है रस फिकन है कलंकं प्रणास है समस्तुल निवास है गंजुल गनीम है रजाय करहीम है समस्तुल जुबा है साहिब किरा है के नरकं प्रणास है बहस तुल निवास है केसर बुल गवन है मेसुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अदीश है अदेसुल अलेख है मेसुल अपेख है जमीनुल जमा है मीकुल इमा है करीमुल कुमाल है इतरत जमाल हैं के अतलंग प्रकाश हैं के मित्तो सुबास हैं के अजब स्वरूप हैं के मित्तो विभूत हैं के मित्तो पसा हैं के आत्म प्रभा हैं के अतलंग अनंग हैं के मित्तो पंग हैं मद पार छंद व प्रसाद मन मन प्रणाम गुण गण मुदाम हर बरागंज हर नर प्रपंज अनगन प्रणाम मन मन सलाम हर नरा खंड बर नरा मंडन पवनाथ मन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जत थल मुदाम अन छिजांगा सुन उपमा पारगत मित उदार जल थल मंड दिस विसा पंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अन पवनाथ त्रित तर त्रास आ जान बाहु कै सदा हो ओंकाराद कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरपरा काल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अन छिज गात आज जनाबात अन चंज गात अन रंज बात अन टुट भंडार अन ठट पारा डीत महत डीत कर मान ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्व प्रसाद करुणाला है हर काला है खलखंडन है महमंडन है जगदेश्वर है परमेश्वर है खलकारण है सुलबोबारण है तृतीतरण है जाके करण है मन मान्या है जग जान्या है सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्वपास्या सर्वनाश्या है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंड सह कलखंड सह प्रत्य पर है करुणा कर है जपा जप है थपा थप है अकृता कृत है अमृता अमृत है अमृता अमृत है करुणा कृत है कृता कृत है तरणी कृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है कृता कृत है अमृता अमृत है अजबा कृत है अमृता अमृत है निर्नायक है खलकायक है विश्वम पर है करुणाल है निर्नायक है सृपायक है पपंजन है अर्गंजन है रिपतापन है दपजापन है अकलंकृत है सर्वा कृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्मा है सर्वात्मा है आत्मवास है जस के जस है पोजांग प्रयात छंद नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राजराजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संतान संसांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पोज पोजे नमो पान पाने नमो कलहकर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नादम विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बांके पंगी स्वरूपे नंगी नामे त्रिपंगी त्रिकाले नंगी अकामे एक अश्री छंद अजय अल पू अजू अनास अकास गंज पंज लख पख काल दयाल लेख पेख नाम कम गाह टाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेख ओजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामे विपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मं
ਅਸੀਂ ਸੋ ਧਰਮੰ ਬੇਪੂ ਤੇਸ ਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਤਰੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਕਰੀ ਮਲੁਕ ਨਿੰਦਾ ਸਮਸਤ ਨਿਵਾਸ ਅਜਾਇਬ ਬੇਪੂ ਤੇ ਗਜਾਇਬ ਗਨੀਮੇ ਹਰੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਕਰੀ ਮਲ ਰਹੀ ਮੈਂ ਚਤਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਭੁਗਤੇ ਸੁਜਮ ਭਾਵ ਸੁਭੰਗ ਸਰਬਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ ਦੋ

बिना भोग भोग के हुए पसमड़ भोर सदाया वड़ा हो आदनीदार गल संगल कचदाया अगे करनी किरत वाचिया बह लिखा कर समझाया।

भैव शगन कडावेगार भैव सरसी दबे पहार भैव छिंद फ्रैसर पार भैव चराजा धर्म द्वार भैव सूर्य भैव चंद को करोड़ी चल।

0: मैं जोत जोत में जाता है कलकला प्रभुर है तू सच्चा साहब सिर्फ सवालियों जिनकी तीसो पार पाया कहो नान करते क्या बात जोक्ष करना सो कर रहे महला दूजा
1: जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं एक

पौड़ी नानक कंदना जापनी हरता के पारावार आप कराय साखती फिर आप कराय मार एक नगरी जंजीरिया एक त्रिचड़े बसियार आप कराय करे आप होके सुकृ पुकार नानक करना जिनकी आ।

0: पाए, प्रभ के सिमरन उदरे मूचा, प्रभ के सिमरन सब कुछ सुजे, प्रभ के सिमरन पूरन आशा, अमृत नामृत मही समाए, नानक जन का दासन दसना, प्रभ के सिमर से पतिवंते, प्रभ के सिमर से पुरख प्रदान, प्रभ के सिमर से सर्व के राजे, प्रभ के सिमर सदा अविनाशी, नानक जन की मंगेर वाला, प्रभ के सिमरन तिन सद बलिहारी, प्रभ के सिमरन तिन सुख विहावे, प्रभ के सिमरन तिन निर्मल रीता,
1: प्रभ के सिमर है तिन आनंद कनेरे,
0: प्रभ के सिमर वसे हर नेरे,
1: संत कृपा ते अंदन जाग,
0: नानक सिमरन पूरे पाग,
1: प्रभ के सिमरन कार्य पूरे,
0: प्रभ के सिमरन कबू न चूरे,
1: प्रभ के सिमरन हर गुण बानी,
0: प्रभ के सिमरन सहज समानी,
1: प्रभ के सिमरन निश्चल आसन,
0: प्रभ के सिमल कमल विगासन,
1: प्रभ के सिमरन अनहर चुनकार,
0: सुख पर सिमरन का अंत न पार,
1: सिमर से जन जन को प्रमेय,
0: नानक तिन जन सन्नी पया,
1: हर सिमरन कर भक्त प्रगटाए,
0: हर सिमरन लग भेद उपाए,
1: हर सिमरन पै सद जति दाते,
0: हर सिमरन नीच चौकुट जाते,
1: हर सिमरन तारी सब तरना,
0: सिमर सिमर हर कारण करना,
1: हर सिमरन कियो सगला कारा,
0: हर सिमरन में आप

0: ते हो हर को नाम,
1: नाम देखा है गुण गाम,
0: सब ते उत्तम हर की कथा,
1: नाम सुनत दर्द दुख लथा,
0: नाम की महिमा संत रद वसे,
1: संत प्रताप दर्द सब नसे,
0: संत का संग वड भागी पाई।

0: सिमरत भगवान
1: जो गया व्यास कर्म धर्म किरिया
0: सगल त्याग वन मत फिरिया
1: अनेक प्रकार किए बहु जतना
0: कौन दान हम में बहु रतना
1: शरीर कटाए हम में कर राती
0: वर्त नेम करे बहु पांति
1: नहीं तो राम नाम विचार
0: नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार
1: नौ खंड प्रथम

0: तीर्थ दे छुटे
1: मनते उठे
0: सोच करे दिन सार रात
1: मन की मैल न तन दे जात
0: इस देही को बहुत साधना करे जल धोवे बहुत देह अनीत मन हर के नाम की महिमा ऊच
1: नानक नाम उतरे पतित बहु मूच
0: बहु सियानप जम का पौ व्यापे
1: अनेक तरह

0: जय प्रसाद तारु ऊपर सुख बस है
1: सुध ब्रांत मीत बनीता संघ हसे
0: जय प्रसाद पीवे है शीतल जला
1: सुखदाई पवन पावक अमूला
0: जय प्रसाद भोगे है सब रसा
1: सगल सामग्री संग साथ वसा
0: इन्हें हस्त पाव कर नेत्र रसना
1: से त्या अवर संग रचना
0: ऐसे दोग मोड़ा

0: से मृत्यु आलस कीजे
1: जय प्रसाद अस्वहस्त अस्वारी
0: मंतिस प्रभु को कबूना बिसारी
1: जय प्रसाद बाग मिलक तना
0: राख प्रोय प्रभु अपने मना
1: जन तेरी मन बंत बनाई
0: उठत बैठे सत्य त्याई
1: इसे त्याय जो एक अलख है
0: यहा उहा नानक तेरी रखे
1: जय प्रसाद करे पुन बहुदाना
0: मनाट पैर कर तिसका ध्यान
1: जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी
0: तिस प्रभु को सास सास चितारी
1: जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप
0: तो प्रभ सिमरियो सदा अनूप
1: जय प्रसाद तेरी निकी जात
0: तो प्रभ सिमर सदा दिन रात
1: जय प्रसाद तेरी पत्र है
0: गुरु प्रसाद नानक जस कहे
1: जय प्रसाद

0: प्रशासन पूर्ण फल है
1: जहाँ पर सार परम गत पाव है
0: प्रशासन सह समावे
1: ऐसा प्राव त्याग अवर गत लाग हो
0: प्रसाना निकमन जाग हो
1: जय पर सात प्रकट संसार
0: प्रभ को मूल न मनो विसार
1: जय पर सा तेरा प्रताप
0: मन मूड तू ताको जाप
1: जय पर साध तेरे कार्य पूरे
0: जान मन सदा हजूरे
1: जय पर सा तुम पाव है साच
0: मन मेरे तू ता शिव राच
1: जय पर सा सब की गत होए
0: नानक जाप जपे जप सोए
1: आप जपाए जपे सो नाओ
0: आप गवाए सो हर गुण गाओ
1: प्रभु कृपा ते होए प्रगास
0: प्रभु दया ते कमल विगास
1: प्रभु सब प्रसन्न बसे मन सोए
0: दया ते मत उत्तम होए
1: सार्वन दान प्रभु तेरी मया
0: आपू कछु न किन्हु लया
1: जित चित लाव हो तित लगे हर नाथ नानक इनके

0: राष्ट्रपति साध के संग मुख उजल होत
1: साध संग मल सगलीक होत
0: साध के संग मटे अभिमान
1: साध के संग प्रगटे सो ज्ञान
0: साध के संग बुझे प्रभ नेरा
1: साध संग सब होत निबेरा
0: साध के संग पाए नाम रतन
1: साध के संग एक ऊपर जतन
0: साध की महिमा बने कौन प्राणी
1: नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी
0: साध के संग अगोचर मिला
1: साध के संग सदा पर फुल्ले
0: साध के संग आवे बस पंचा
1: साध संग अमृत रस पंचा
0: साध संग होए सब की रेन
1: साध के संग मनोहर बैन
0: साध के संग न कतहु तावे
1: साध संग अस्तित मन पावे
0: साध के संग माया ते पैन
1: साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न
0: साध संग दुश्मन सा मीत
1: साधु के संग महापनीत
0: साध संग के स्यो नहीं बैर
1: साध के संग न बीगा पैर।

0: ब्रह्म ज्ञानी का हे गुनाओ
1: ज्ञानक जो पावक का सहज स्वभाव
0: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
1: जैसे मेल न लागे जला
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश
1: जैसे तर ऊपर आकाश
0: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतर समान
1: ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अभिमान
0: ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा
1: मन अपने है सबते नीचा
0: ब्रह्म ज्ञानी से जन पे
1: नानक जिन प्रभ आप करे
0: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना
1: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
0: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मेया
1: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदारसी
1: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
0: ब्रह्म ज्ञानी का पोजन ज्ञान
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
0: ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस
1: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
0: ब्रह्म ज्ञानी के करीबी समाहा
1: ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाही धंधा
1: ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा
0: ब्रह्म ज्ञानी के होए सो भला
1: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
0: ब्रह्म ज्ञानी संग सकल उदार
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सकल संसार
0: ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग
1: ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत
1: ब्रह्म ज्ञानी अहमद त्यागत
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
1: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद
0: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
0: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता
1: ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता
0: ब्रह्म ज्ञानी के होए सब ब्रह्म ज्ञानी के होए अचंत
1: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत
0: ब्रह्म ज्ञानी जस करे प्रवे आप
1: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
0: ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाईया
1: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए
0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे
1: ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे
0: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद
1: ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश
0: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाए अध्याखर
1: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
0: ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने
1: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
0: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी सजीवे नहीं मरता
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
1: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता
0: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल

0: नानक ओ अपरस सगलन सतारे। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना पारस,
1: मन में प्रीत निरंजन दर्श,
0: पात्रया रूप न पेखे नेत्र,
1: साथ की टहल संसंग हेत।

0: जीव निवाज
1: जाका दृष्ट कछु न आवे
0: तत्काल दै दिस प्रगटावे
1: जाको अपने करे बख्शीस
0: आका लेखन गने जगदीश
1: जियो पिंड सब तेस की रास
0: कट पूरन ब्रह्म प्रकाश
1: अपनी बनत आप बनाई
0: नानक जीव देख बटाई
1: इसका बाल नाही इस हाथ
0: ग्राविन सर्व को नाथ
1: आज्ञाकारी बपरा जियो
0: जुतिस पावे सोई फन थियो
1: कबो ऊंच नीच में बसे
0: कबो सोख हर खरंग हसे
1: कबो नन चंद व्यवहार
0: कबो ऊब आकाश प्याल
1: कबो बेता ब्रह्म विचार
0: नानक आप मिलावन हार
1: कबो नर्त करे बह पात
0: कबो सोई रहे दिन रात
1: कबो महाक्रोध बेकराल
0: कबो सर्व की हो तिरवाल
1: कबो होए बह बड़ राजा
0: कबो भिखारी नीच का साजा
1: कबो अब कीर्त में आवे
0: कबू पला पला कहावे
1: जो प्रभु राखे तिव ही रहे
0: गुरु प्रसाद नानक सच कहे
1: कबू होए पंडर करे बख्यान
0: कबू मौन तारी लावे ध्यान
1: कबू तट तीर्थ स्नान
0: कबू सिद्ध साधक मुख ज्ञान
1: कबू कीट हस्त पतंग होए जिया
0: अनेक जोन पर में पर मिया
1: नाना रूप ज्यो स्वागी दिखावे
0: जो प्रभु पावे तिवे नचावे
1: जो तस पावे सोई होए
0: नानक दूजा अबर न कोए
1: कबू साध संग ते हो पावे
0: उस स्थान ते बहर न आवे
1: अंतर होए ज्ञान प्रकाश
0: उस स्थान का नहीं विनाश
1: मानता नाम रत्ते एक रंग
0: सदा बसे पार ब्रह्म के संग
1: जो जल में जल एक टाना
0: जो ज्योति संग ज्योत समाना
1: मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभु के सद कुर्बान।

0: की निर्मल सोए,
1: जब लग जाने मज ते कछ होए,
0: तब इसको सुख नाही कोए,
1: जब ए जाने मैं कछ करता,
0: तब लग गरीब जोन में फिरता,
1: जब तारे को बैरी मीत,
0: तब नहीं जीत,
1: जब लग मोह मगन संग माए,
0: तब लग तरम राई देश जाए,
1: प्रभु के कृपा ते बंधन टूटे,
0: प्रसाद नानक हउ छूटे,
1: सहस कटे लख कोट तावे,
0: तृप्त न आवे माया पाछे पावे,
1: निक भोग विख्या के करे,
0: तृप्ता भी खप खप मरे,
1: बिना संतोख नहीं को राजे,
0: सपन बिनोरत बैठे सब काजे,
1: नाम रंग सर्व सुख होए,
0: पागी किसे प्राप्त होए,
1: कर्ण करावन आपे आप,
0: सदा सदा नानक हर जाप,
1: कर्ण करावन करने हार,
0: इसके हाथ कहा विचार,
1: जैसी दृष्ट करे तैसा होए,
0: आप प्रभ सोए,
1: जो

0: बचिया सबके साथ है।
1: आपकी नो अपन विस्तार
0: सब कुछ उसका ओ करने हार
1: उसते पेन कहो कैच होए
0: अनंतर एक के सोए
1: अपने चलत आप करने हार
0: कौतक करी रंग अपार
1: मन में आप मन अपने माहे
0: नानक कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी
0: गुर प्रसाद किने बख्यानी
1: सच सच सच सब कीना
0: ओट मदे किने बिरले चीना
1: भला भला भला तेरा रूप
0: अति सुंदर अपार अनूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी वाणी
0: कट कट सुनी सर्वन

0: संत का दुखी सदा बेकारी,
1: संत का दुखी जन्म मरे,
0: संत की दुख न सुखते टरे,
1: संत के दुखी को ना ही ठाओ,
0: नानक संत पावे तले मिलाए,
1: संत का दुखी अध बीच ते टूटे,
0: संत का दुखी किते काज न पहुँचे,
1: संत के दुखी को ध्यान परमाइए,
0: संत का दुखी उजड़ पाइए,
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा,
0: जो सास बिना मृत की लोथा,
1: संत के दुखी की जड़ कछ ना
0: है, आपन बीजा पे ही खाए,
1: संत के दुखी को अगर राखन हार,
0: नानक सत पावे तले उबार,
1: संत का दुखी ओ बल लाए,
0: जो जल बहन मछली तड़फड़ाए,
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजे,
0: जो पावे की तनी त्रापे,
1: संत का दुखी छुटे अकेला,
0: जो बुआड़ तिल खेत माहे दुहेला,
1: संत का दुखी धर्म ते रहत,
0: संत का दुखी सद मिथ्या कहत,
1: करत नंद का तुरही पिया,
0: नानक जो तिस पावे सोए थे,
1: संत का दुखी बुढ़ रूप हो जाए।

0: देवन को एक के भगवान
1: जिसके दिए रहे अगाए
0: और न तृष्णा लागे आए
1: मारे राखे को आप
0: मानु के किछ नाही हाथ
1: जिसका

0: अनेक सोजन सदा अरोग।
1: जो मंदर को थामे थमन,
0: जो गुर का शब्द मने अस्थमन,
1: जो पाखान नाव चढ़ता रहे
0: प्राणी गुरु चरण लगत निस्तर,
1: जो अंधकार दीपक

0: की हर लोचा पूर
1: मन मूरख काहे बल लाइया
0: पूर्व लिखे का लिखा पाइया
1: दुख सुख प्रव देवन हार
0: अगर त्याग तू तिसे चितार
1: जो कछ करे सोई सुख मान
0: ला काहे फिरे अजान
1: कौन बस्त आई तेरा संग
0: लपट रियो रस लोभी पतंग
1: राम नाम

0: अपने जन का पर्दा ढाके,
1: अपने सेवक की सर पर रखे,
0: अपने दास को दे वड़ाई,
1: अपने सेवक को नाम जपाई,
0: अपने सेवक की आपत रखे,
1: ताकि गतमित कोई न लाखे,
0: प्रभु के सेवक को न पहुँचे,
1: प्रभु के सेवक ऊंचे ऊंचे,
0: जो प्रभु अपनी सेवा लाया,
1: नानक सो सेवक तैतीस प्रगटाया,
0: की कीरी महकल रखे,
1: पसम करे लश्कर कोट लाख है,
0: जिसका सास न काटते आप,
1: को राख देख कर हाथ है,
0: मानस जतन करत बहुपात,
1: जिसते करत बिरथे जात,
0: मारे न राखे अवर न कोए,
1: रब जिया का राखा सोए,
0: काहे सोच करे रे प्राणी,
1: जप नानक प्रभ अलख विडाणी,
0: बारं बार बार प्रभ जपिया,
1: पी अमृते मन तंत्र पिया,
0: नाम रतंजन गुरमुख पाया,
1: किछ अवर नहीं दृष्टाया,
0: नाम तन नमो रूप रंग,
1: नमो सुखर नाम का संग,
0: नाम राजो जन तृप्ताने,
1: मंतन नामे नाम समाने,
0: उठत बैठत सोवत नाम,
1: कह नानक जन के सद काम,
0: बोलो

0: संतोख आत्म पति आने
1: पूरा कर आख्यो जाका मंत्र गुण ब्यांत कीमत नहीं पाए
0: नानक जिस पावे तिस लय मिलाए
1: जेबा एक उस्तत अनेक
0: सतपुरख
1: काहू बोल न पहुंचत प्राणी
0: अगम अगोचर पर निर्वाणी
1: तेरा हार नर वैर सुखदाई निक भगत वंदन नत कर है सद बलिहारी सतगुर अपने
0: नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने
1: एहो हरस पावे जन कोए
0: अमृत
1: उस पुर का करना ही कदे विनाश आठ पैर हर का नाम ले मुह माया के संग न लेप
0: मन में रखे हर हर एक
1: अंधकार दीपक परगासे
0: नानक परमो दुख तहते नासे
1: तप्त महे ठंड बरताई
0: अंध पिया दुख नाठे पाई
1: जन मरन के मिटे अंदेसे
0: साधु के पूर्ण उपदेसे
1: पौचुका नरपा होए बसे
0: सकल ब्यान मन देखे नसे
1: जिसका साथ इन कृपा तारी
0: संजप नाम मुरारी
1: चित पाई चुके प्रम गवन
0: नानक हर हर जस सरवन
1: निर्गुण आप सरगुण पी ओही
0: कला तार जिन सगली मोही
1: अपने चलत प्रभ आप बनाए
0: अपनी कीमत आपे पाए
1: आप हर बिन दूजा नाही कोए
0: सर्व निरंतर एको सोए
1: पोत पोत रव्या रूप रंग
0: पै परगास साथ के संग

0: क्या लपटावे मूर्ख मना
1: सोत मीत कुटुंब अरबंता
0: इनते कहो तुम कवन सनाथा
1: राज रंग माया विस्तार
0: इनते कहो कवन छुटकार
1: अस हस्ती रथ असवारी
0: उठा टांग चूट पा सारी
1: जिन दिए तिस बुझे ना बिगाना
0: नाम बिसर नानक पछताना
1: गुर की मात तुम लहे आने
0: भगत बिना बो डूबे सियाने
1: हर की भगत करो मन मीत
0: निर्मल होए तुम्हारो चीत
1: चरण कमल रखो मन माहे
0: जन्म जन्म के किल बिख जाहे
1: आप जपो अवरा नाम जपावो
0: सुनित कहत रहत कित पावो
1: सार पूत सत हर को नाओ
0: जैसे बाय नानक गुन गाओ
1: गुन गावत तेरी उतरस मैल
0: निन्स जाय हो में बिख फैल
1: होए अचंत बसाय सुख नाल
0: सास ग्रासर नाम समाल
1: साड सियाण पसगली मना
0: सास संग पावे सच तना
1: हर पूंजी सच करो बिहार
0: यह सुख दरगे जयकार
1: सार्व निरंतर एको देख
0: नानक जाके मस्तक लेख
1: एको जप एको साल आहे
0: एक सिमर एको मन आहे
1: एक के गुण गाओ अनंत
0: मंतन जाप एक भगवंत
1: एको एक एक हर आप
0: पूरन पूर रहे प्रभ्याप
1: निक विस्तार एक ते पए
0: एक अराध पराशित गए

0: अगन मह राख है,
1: गुर प्रसाद को बिरला लाख है,
0: सोके बिसरे जिन बिख ते काढ़े,
1: जन्म जन्म का टूटा गाढ़े,
0: सोके बिसरे जे बिख ते काढ़े,
1: जन्म जन्म का टूटा गाढ़े,
0: वर पूरे तत एह बुझाया,
1: अपना जानक जन ते आया,
0: साजन संत करो एहो काम,
1: ध्यान जपो हर नाम,
0: सिमर सिमर सिमर सुख पावो,
1: आप जपो अवरा नाम जपावो,
0: भगत पाए तरिया संसार,
1: भक्ति तन होसी शार,
0: सर्व कल्याण सुख नद नाम,
1: उनित जात पाए विश्राम,
0: सगल दुख का होवत नास,
1: नानक नाम जपो गुणतास,
0: अवजी प्रीत प्रेम रस चाओ,
1: मन तने अंतर एही सुआओ,
0: नेत्रो पेख दर सुख होए,
1: मन विकसे सात चरण तोए,
0: भक्त जना के मन तन रंग,
1: बिरला को पावे संग,
0: एक वस्त जीजे कर मैया,
1: गुरु प्रसाद नाम जप लेया,
0: ताकि उपमा कही ना जाए,
1: नानक रहया सर्व समाए,
0: प्रभक्षण दीन दयाल,
1: भगत वशल सदा कृपाल,
0: अनाथ नाथ गोविंद गोपाल,
1: सर्व कटा कर्त प्रतिपाल,
0: आद पुरख कारण करतार,
1: भक्त जना के प्राण आधार,
0: जो जो जपे सो होए पनीत,
1: भगत पावे लावे मन हीत,
0: हम निर्गुण यार नीच अजान,
1: नानक तुमरी शरण पुरख भगवान,
0: सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए,
1: एक निमक हर के गुण गाए,
0: नेक राज भोग बढ़ियाई,
1: हर के नाम की कथा मन पाई,
0: वो भोजन का प्रसंगीत,
1: कृष्णा जपती हर हर नीत,
0: भली सो करनी सो बातनवंत,
1: हृदय बसे पूरन गुरमंत,
0: साध

0: तब कहते होता
1: जब तारी अपन सुन समाद
0: बैर विरोध के संकमात
1: जब इसका वर्ण चहना जाबत
0: हर सुख को किसे व्यापत
1: जब अपन आप आर ब्रह्म
0: मोह कहा किस होवत परम
1: अपन खेला भरतीजा
0: नाने करने हार न दूजा
1: जब होवत प्रव केवल तनी
0: मुख को किसको गनी
1: जब एक हर अगम अपार
0: तब नर्क स्वर्ग को कौन अवतार
1: जब नरगन प्रव सहज सुभाए
0: तब शिव सगत को कित ठाए
1: जब आप है आप आपने जब आप है आप अपनी जोत तरह
0: तब कवन निडर कवन कत डरे
1: अपन चलता अब करने हार
0: नानक ठाकुर अगम अपार
1: अविनाशी सुख अपन आसन
0: जन्म मरण को कहा विनाशन
1: अब पूर्ण करता प्रव सोए
0: जमकी त्रास कहो किस होए
1: जब अवगत अगोचर प्रव एका
0: तब चित्र गुप्त किस पूछित लेखा
1: जब नाथ निरंजन अगोचर गादे
0: तब कौन छूटे कौन बंधन बाधे
1: अपन आप ही अचर्जा
0: नानक आपन रूप आप ही उपर्जा
1: जह निर्मल पुरख पत होता
0: बिन मैल क्या क्या तोता
1: जह निरंजन निरंकार निर्वाण
0: कौन को मान कौन अभिमान
1: जह स्वरूप केवल जगदीश
0: शल छिद्र लक्त को कीस
1: जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे
0: किसे भूख कवन तृप्तावे
1: कर्ण करावन करने हार
0: नाने करते का नाहे सुमार
1: जब अपनी शोभा अपन संग बनाई
0: तब कवन बाय बाप मित्र सुत पाई
1: जय सर्व कला आप है परवीन
0: वेद के देव कहा को चीन
1: जब अपन आप और तारे
0: तो सगन अब सबन कहा बिचारे
1: जय अपन ऊंच अपन आप नेरा
0: मैं कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा
1: बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद
0: नानक अपनी गत जानो आप
1: जय अचल छेद भेद समाया
0: हुआ किसे व्याप्त माया
1: आप उसको आप है आदेश
0: गुण का नहीं परवेश
1: जय एक एक एक भगवंता
0: कौन अचिंत किस लागे चिंता
1: जय अपन आप पतियारा
0: कौन कथे कौन सुनने हारा
1: वह बयान तू

0: नरक को स्वर्ग बंछावत
1: आ जाल माया जंजाल
0: में मोह परम पे पार
1: दुख सुख मान अपमान
0: अनेक प्रकार की बखियान
1: अपन खेलाव कर देख
0: खेल संकोच तो नानक एक
1: अवगत भक्त तह आप
0: पसरे पासार संत प्रताप
1: दोहूं पाख अपे तनी
0: उनकी शोभा उन्हों बनी
1: आपे कौतक करे अनंत चोज
0: आपे रस पोगन निर्जोग
1: जिस पावे तिस अपन नाई लावे
0: जिस पावे तिस खेल खिलावे
1: बेसमार आथा

0: राष्ट्रपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा
1: नाम प्रभु का लागा मीठा
0: सगल समग्री एक स्कट माहे
1: अनेक रंग नाना दृष्टा है
0: नौ नद अमृत प्रभ का नाम
1: देही में इसका विश्राम
0: सुन समाद अनहत नाद
1: न जाए चर्च विस्माद
0: किन देखिया जिस आप दिखाए
1: नानक तिसन सो जी पाए
0: सो अंतर सो बाहर अनंत
1: कटकट व्यापरिया भगवंत
0: धन माहे आकाश पयाल
1: लोक पूर्ण प्रत
0: मंथन पर्वत है पार ब्रह्म
1: जैसी आज्ञा तैसा कर्म
0: पान पानी बैस अंतर माहे
1: तो जिसे समाहे
0: जिसते पेन नहीं को ठाओ
1: सा नानक सुख पाओ
0: वेद प्राण सिमरत मह देखो
1: सिय सूर नखत्र में एक
0: वाणी प्रभु की सबको बोला
1: आप अडोल न कबू डोल
0: सर्व कलाकार खेले खेल
1: मोल न पाइये गुण अमोल
0: सर्व ज्योत मह जा की ज्योत
1: आर्यो स्वामी
0: घर पर साध परम का नास
1: नानक तिन में एह विसास
0: संत जना का पेखन सब ब्रह्म
1: संत जना के हृदय सब धर्म
0: संत जना की सुने सब वचन
1: संत
0: जिना सुने सब वचन
1: सर्वव्यापी नाम रंग रचन
0: जिन जाता तिस की यह रहत
1: सत वचन साधु सब कहत
0: जो जो होए सोई सुख माने
1: कर्ण करावन हार प्रभ जाने
0: अंतर बसे बाहर पी ओही
1: नानक दर्शन देख सब मोही
0: आप सत किया सब सत
1: तिस प्रभ तिस अगली उत्पात
0: जिस पावे ता करे विस्तार
1: जिस पावे ता एक अंकार
0: नित कला लखी न जाए
1: जिस पावे तिस लय मिलाए
0: कवन नेक्ट कवन कहिया दूर
1: आपे आप भरपूर
0: अंतर्गत जिस आप जनाए
1: नानक शिष्य ने आप बुझाए
0: सर भूत आवरतारा
1: सर्व नैन आपे खनहारा
0: सगल समग्री जा की जा का तना
1: आपन जिस आप ही सुना
0: आवन जान एक खेल बनाया
1: आज्ञाकारी की नी माया
0: सब के मद अलप तो रहे
1: जो कुछ कहना सो आपे कहे
0: आज्ञा आवे आज्ञा जाए
1: नानक जा पावे ता लय समाए
0: इसते हुए सो नाही बुरा
1: कहो किने कुछ करा
0: आप।

0: लागा हर रंग
1: जय जय शब्द अनाहद वाजै
0: सुन सुन अंत करे प्रभ गाजै
1: प्रकटे गोपाल महात कै माथे
0: नानक उदरे तिनके साथे
1: सरन जो संसरनी आए
0: कृपा प्रभ आप मिलाए
1: मिट गए बैर पे सब रेन
0: अमृत नाम सा संग लैन
1: सुप

का प्रण भंग हर का नवजन कवन कर नवजन की वड्याई हर कै नवजन शोभा पाई हर का नवजन को भोग जोग हर नाम जपत कत नाही बेयोग।

अपना जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पैर जन हर हर जपाए हर का भगत प्रगत नहीं छपाए हर की भगत मुकत बव करे नानक जन संकेत तरे पार जाते हो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सबते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की मेहमान संत दसाय संत प्रताप दुर्त सब नसै संत का संगवट भागी पाई है संत की सेवा नाम त्याई है नाम तुल कछ अवन होए नानक गुरमुख नाम पर भावै जन कोई श्लोक बहु शास्त्र बहु स्मृति पेके सर्ब टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप तप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत विख्यान योग अभ्यास कर्म

तुझ सब को माना ही मुक्ता को जस रसन बखाना जी प्रसाद तेरू रहता धर्म मनसदा त्याय केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जपत दरगह मन पावै नानक पद सेती कर जावै है जे प्रसाद आरो कंचन देही लिव लाभ हो तिस नाम स्नेही जे प्रसाद तेरा ओला रहत मान सुख पावै हर हर जस कहत। जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सरणी पार ठाक प्रभता कै जे प्रसाद तुसको न पहुँचाए मन सहसा सा सिमरो प्रभुचे। जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक तां की भगत करेहे जे प्रसाद भूखन पहरी जाए मान तिस सिमरत क्यों अलस की जाए जे प्रसाद अस्त अस्त वारी।

परमानंदा साधक संग नाही हो ताप साधक संग तजा सब आप अपे जान साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साधक संग न कबहुता वै साधक संग सदा सुख पावै साध संग बस्त अगोचर लहै साधु कै संग अजर सहै साधक संग बसै थान उच्चै साधु कै संग महल पहुँचै साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुरबान साधक संग सब कुल उधारै साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै साधु कै संग सो धन पावै जिस धन ते सब को बरसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साधक संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप लायन साध संग अमृत गुण गायन साध कै संग सब थान गम नानक साधक संग सफल जनम साधक संग नहीं कछ काल दर्शन भेटत होत निहाल साधक संग कलु खत हराय साधक संग नरक पर हराय साधक संग ईहा

ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म

कई कोट भिग आत्म निकोर, कई कोट पर द्रको हराय, कई कोट पर दुख न करहै, कई कोट माया शरमाहे, कई कोट शरमाहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगनाऊ, नानक करते की जाना करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कुट राजे रस भोग भोगी, कई कुट पंखी सर्प।

क्रोध विकराल। कबू सर्व की हो त्रिबाल, कबू होए बह बड़ राजा, कबू फेखारी नीच का साजा, कबू हफकीरत में आवै, कबू भला भला कहावै, जो परव राखै तब ही रहै गुरप्रसाद नानक सच कह। कबू होए